0: or 105.4 FM.
1: Assalamualaikum and kia ora.
2: Welcome to Indus to Otago on OAR FM.
1: Brought to you by the Pakistani Cultural and Wellbeing Society.
2: इत्शाम कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह, आप सुनाएं कैसे हैं जनाब?
2: मैं ठीक ठाक. तो इत्शाम, ये हमारा फर्स्ट शो है जैसे yes, आपको पता है, और बहुत सारी कोशिशों के बाद हम यहाँ तक पहुँचे हैं कि ये वाला शो जो है हम कंडक्ट कर सकें. और इस शो में हमारे साथ एक गेस्ट भी होंगे जो हमें आगे जाके ज्वाइन करेंगे, ज़ीशान बशीर साहब. तो क्या कहते हैं इत्शाम, आप कुछ अपना इंट्रोडक्शन दें.
1: First of all, Zarnab, thank you so much for being tribute me. मेरा नाम एहतशाम मलिक है और मैं बिलोंग करता हूँ पाकिस्तान पंजाब से. और मैंने FSC के बाद अपना BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया. वो करने के बाद मुझे अपॉर्चुनिटी मिल रही थी न्यूज़ीलैंड आने की. तो जी, हमारे एक बहुत ही क्लोज्ड फ्रेंड्स हैं जिनकी वजह से ये अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, तो वो मैंने अवेल की और उनके बाद सारा प्रोसेस हुआ. वो प्रोसेस करने के बाद फाइनली हम यहाँ पे बैठे हुए हैं, एक ही डेस्क पे, एक ही टेबल पे हम ये शो कर रहे हैं.

0: तो यस दैट्स ऑल.
1: तो मुझे कुछ अपने बैकग्राउंड का बताएं, पाकिस्तान में आपने क्या स्टडीज़ की हैं?
0: मैंने जनाब जैसे कि बताया कि मैंने FSC के बाद BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस की और CA भी मैंने किया, लेकिन CA पूरा नहीं कर सका. उसकी वजह ये थी क्योंकि बहुत टाइम टेकिंग था वो, तो इस वजह से पूरा नहीं हो सका वो. लेकिन फाइनली मैंने BS अकाउंटिंग एंड फाइनेंस किया और वो करने के बाद मैं यहाँ पे आ गया.
1: ठीक है, तो यहाँ तक का आपका सफ़र पाकिस्तान से निकलने के बाद क्या आपको हर्डल्स आईं, क्या चीज़ें आपने फेस की, कुछ इसके बारे में बताएं ज़रा.
0: पाकिस्तान से निकलने के बाद मेरे माइंड में बहुत सारे ख्यालात थे कि क्योंकि जैसे आप जानते हैं कि पाकिस्तान में एक हमारा एक सोशल सर्कल बहुत अच्छा था, क्योंकि वहीं पे हम छोटे बड़े वहीं पे हुए और वहाँ पे हमारा फ्रेंड सर्कल भी बहुत अच्छा था. तो वो जिस टाइम पे आप छोड़ रहे होते हो, अपने पेरेंट्स को छोड़ रहे होते हो एक नई अपॉर्चुनिटी को अडॉप्ट करने के लिए, तो आपके माइंड में बहुत सारी चीज़ें होती हैं कि नया कंट्री है, नए लोग हैं, कैसे लोग होंगे, क्या वहाँ पे जाके आप ओवरकम कर सकोगे अपने जो आपके आपने अपने माइंड सेट में कुछ भी सोचा हुआ है. तो यहाँ आने के बाद आहिस्ता आहिस्ता मुझे ये लगा कि यहाँ पे जो चीज़ें अगर आप करना चाहते हो तो वाकई हो सकती हैं. अगर आप किसी भी चीज़ को टाइम देते हो तो उसका आपको रिज़ल्ट लाजमी ही मिलता है. नॉट लाइक कि अगर आप मेहनत करते रहोगे और जो आप सोच रहे होगे कि आपको मिलना चाहिए वो आपको नहीं मिलेगा, ये वैसा कंट्री नहीं है. तो जनाब मुझे आप बताएं अपने बारे में कि आप कहाँ से बिलोंग करते हैं, और उसके बाद आप अपने कैरियर के बारे में बताएं मुझे थोड़ा.
1: एहतशाम, जैसे आपको पता है कि हमारी मुलाकात तो वैसे यहाँ पे ही हुई है, और उसके अलावा मैं पाकिस्तान में फैसलाबाद से बिलोंग करता हूँ, और फैसलाबाद आपको पता है एक बहुत ही अच्छा शहर है, बड़ा शहर है, पाकिस्तान का तीसरा बड़ा शहर है. और इसके अंदर ये है कि हम यहाँ पे आए, बहुत सारी चीज़ें देखी. बैकग्राउंड में ये आ जाता है कि जो पाकिस्तान में जब मैं था तो मैंने NTU से, नेशनल टेक्सटाइल यूनिवर्सिटी से, अपना बैचलर्स किया टेक्सटाइल इंजीनियरिंग में. और फिर उसके बाद मैं UK चला गया, वहाँ पे मैंने जाके अपना मास्टर्स किया बिजनेस में, इंटरनेशनल बिजनेस में. तो ये चीज़ें, ये भी एक बहुत लंबी जर्नी थी, बहुत लंबा सफ़र था. 3 साल मैंने ऑलमोस्ट UK में गुजारे, और मतलब एक हार्ड टाइम था मेरे लिए भी UK में, क्योंकि उसके अंदर ये भी था कि एज एन इंटरनेशनल स्टूडेंट आपको पता है कि बहुत सारी चीज़ें आपको फेस करनी पड़ती हैं, आपको वर्किंग आवर्स उतने नहीं मिलते, पार्ट टाइम आप जॉब्स कर रहे होते हो, तो एक बहुत ही टफ सिचुएशन हो जाती है. लेकिन मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट ये है कि वहाँ से निकले, एक अपॉर्चुनिटी मिली न्यूजीलैंड आने की, तो इसको अवेल किया. तो मतलब अच्छा लगा कि यार कुछ थोड़ा सा डिफरेंट होगा. और अगर आप वैसे भी देखें कंपैरेटिवली UK और न्यूजीलैंड, दोनों में बहुत फ़र्क क्या है, मतलब इनके कल्चर्स का भी फ़र्क है. यहाँ पे लोग डिफरेंट हैं, UK में लोग डिफरेंट थे. और अगर आप वैसे बात करें कि अर्निंग वाइज अगर हम बात करते हैं तो थोड़ा सा डिफरेंट है, मतलब UK में अर्निंग आपकी थोड़ी सी ज़्यादा है. और फिर लेकिन ये है कि यहाँ पे एक स्टेबिलिटी है, सुकून है, मतलब एक कंट्री साइड एरिया बन जाता है, यू नो. तो वो चीज़ है, अच्छी है, बहुत मतलब अच्छी लगी है. तो उसके अलावा एक ये चीज़ है एहतशाम के, मतलब हम ये डिस्कस करना चाहेंगे कि हमने ये शो क्यों स्टार्ट किया,
0: जो हमारा मेन मिशन है,
1: मेन हमारा मिशन है, हमारा एम है कि मतलब हमने ये शो क्यों स्टार्ट किया. तो आप बताएं ज़रा थोड़ा सा इसके बारे में.
0: ये शो शुरू करने का हमारा मकसद यही था कि हमारे जो पाकिस्तानी कल्चर्स हैं और जो वेल बीइंग है, जिस तरह हम ओवर वेलकमिंग करते हैं अपने गेस्ट्स को, अपने लोगों को, जिस तरह खुशामद हैं हम पाकिस्तानीज, क्योंकि यहाँ पे आके मैंने एक चीज़ फील की कि यहाँ पे हर कोई अपनी एक भाग दौड़ में लगा हुआ है, किसी के पास किसी के लिए कोई टाइम नहीं है. तो वो चीज़ देखते हुए हमने एक प्लेटफॉर्म डिसाइड किया. हमारे बैक सपोर्ट पे लाजमन बिल्कुल हमारी जो सोसाइटी है वही है जिन्होंने हमें ये प्रमोट किया और हमें इतना एतमाद दिया कि आप ये काम कर सकते हो.
1: जी
0: बिल्कुल. तो इसका

0: यही मकसद है कि यार अपनी जो पाकिस्तानी कल्चर्स हैं और जो वेल बींग है उसको प्रमोट करना। यस
1: जी बिल्कुल, जैसे आप कह रहे हैं कि मतलब हमारे कल्चर को प्रमोट करना। आप भी जानते होंगे जब से आप यहाँ पे आए हैं न्यूज़ीलैंड में, तो हमारी कम्युनिटी पाकिस्तानी स्पेशली जो हैं उसके अंदर मतलब बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं जिनको हम चाहते हैं कि इस प्लेटफॉर्म के थ्रू उन तक मैसेज भी पहुंचे। और दूसरी चीज़ ये है कि सारे कनेक्टेड रहें आपस में, क्योंकि जब से मैं स्पेशली अगर अपनी बात करूं तो जब से मैं यहाँ पे आया हूँ तो कई चीज़ें देखी हैं कि लोग जो हैं वो आपस में इतना मिलते जुलते नहीं है, अपने कल्चर को सेलिब्रेट नहीं करते।
0: यस
1: तो मतलब एज अ पाकिस्तानी कीवी, अगर हम न्यूज़ीलैंड में हैं अगर मैं गलत नहीं हूँ,
0: जी,
1: तो इस चीज़ में ये है कि हम मिलजुल के रह सकते हैं, सेलिब्रेट कर सकते हैं अपने ट्रेडिशन को, अपने कल्चर को। तो ये एक अच्छी चीज़ है जिसकी वजह से हमने स्पेशली ये वाला जो प्लेटफॉर्म चुना और ये ख़ास तौर पे ये जो शो है हमने जिस वजह से स्टार्ट किया, ताकि लोग सुने और मजीद लोग हमसे कनेक्ट हों, आए यहाँ पे।
0: जी बिल्कुल। जैसे कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी कल्चर्स और पाकिस्तानी जो जो जिस तरह हम गेस्ट को वेलकम करते हैं,
1: जी
0: हम ओवरऑल द वर्ल्ड हम इस चीज़ के लिए फेमस हैं। क्योंकि हम जब से मैं न्यूजीलैंड में आया हूँ, तो मैं जिस भी यहाँ के लोकल बंदे से मेरी मुलाकात हुई है, उसको जब मैंने बताया कि मैं पाकिस्तान से बिलोंग करता हूँ, तो वो कहते हैं, ओ पाकिस्तान,
1: जी
0: वेरी वेलकमिंग पीपल्स, वेरी वेलकमिंग पीपल्स। तो
1: जी
0: वो चीज़ बड़ी अच्छी भी लगती है और मुझे खुशी भी है कि हम उस चीज़ को प्रमोट कर रहे हैं एक प्लेटफॉर्म पे।
1: जी तो इस प्लेटफॉर्म का बेसिकली तो मकसद यही है कि सबको आपस में जोड़ के रखना।
0: जी
1: तो इस चीज़ के अंदर जो हमारी सोसाइटी है, पाकिस्तानी कल्चरल एंड वेलबींग सोसाइटी, तो उसका मैं कहूँगा कि बहुत ही एक मेन किरदार है।
0: जी जी बिल्कुल
1: और अगर फॉर एग्जांपल ये सोसाइटी ना होती तो मे बी आज मैं आपको ना जानता, आप बाकी हम जितने पाकिस्तानी भाई बहन हैं मतलब सारे दोस्त हैं या जो भी एक दूसरे से मुलाकात हुई है जिनसे, वो मेनली हमारी इसी सोसाइटी के थ्रू ही हुई है। तो अगर ये सोसाइटी ना होती तो आई डोंट थिंक सो कि हम इस तरह सो फार हम इस तरह कनेक्टेड होते। क्या कहते हैं आप?
0: यस एब्सोल्युटली राइट, बिल्कुल आपकी बात बिल्कुल ठीक है कि अगर ये सोसाइटी ना होती तो हम ना मिलते इस तरह, और इस तरह एक टेबल पे बैठ के हम ये शो ना कर रहे होते।
1: जी
0: तो यस बिल्कुल
1: जी बिल्कुल। तो अभी हम हमारे साथ जो हमारे आज के गेस्ट हैं, हमारे बहुत ही दिल अजीज जीशान बशीर साहब, हम उनको अपने साथ लेंगे। तो मैं यही चाहूँगा कि वो अपने जो हैं वो अपने ख्यालात का इजहार करें और हमें बताएं कि क्या उनका मोटिव था इस सोसाइटी को बनाने का, और जिसकी बेस पे हम लोग भी जो हैं वो फिर ये शो हमने स्टार्ट किया। तो काइंडली जीशान बशीर साहब।
2: जी। अस्सलाम वालेकुम जरनाब एहतशाम, कैसे हैं आप?
1: अल्हम्दुलिल्लाह
0: वालेकुम
1: ठीक।
0: अस्सलाम अल्हम्दुलिल्लाह।
2: सबसे पहले तो मैं आप दोनों का बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा, और स्पेशली रेडियो स्टेशन का, जिन्होंने आज मुझे अपनी बात करने का और अपनी सोसाइटी को प्रमोट करने का मौका दिया, जिसकी वजह से हम आज सब यहाँ पे बैठे हैं। और यही हमारा एम है, यही हमारी गोल है कि हम इसको प्रमोट करें और आगे भी इसी तरह चलते रहें और आपस में मिलते जुलते रहें।
1: जी
2: जी मैं जीशान बशीर हूँ, मेरा ताल्लुक पाकिस्तान पंजाब से है, और मैं स्पेशली अगर मेरी इंटरेस्ट की बात की जाए, अगर मेरे बारे में बात की जाए, तो मेरा इंटरेस्ट शुरू से ही मतलब ट्रांसपोर्ट में और सोशल एक्टिविटीज़ में, लाइक हमारा वहाँ पे अगर आप बात की जाए शॉप्स की और म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग के बेस पे अगर हम बात किए जाएं, तो मेरी एक्सपीरियंस इन चीज़ों में ज़्यादा रहा है। लोगों के साथ मिलना जुलना और लोगों के साथ मिलकर मुझे बहुत अच्छा फील होता है, और उनको सुनना और उनको अपने बारे में बताना, यही मेरा रहा है। और स्टडी की बात की जाए तो मैंने FSC किया है, FSC के बाद मैंने अपना जो बिज़नेस था उसको हैंड ओवर किया है।
1: ठीक है, तो आप हमें काइंडली थोड़ा सा ये बता सकते हैं कि आप इस सोसाइटी को लेके मतलब इसकी ग्रोथ जो है उसके बारे में आप कैसे सोचते हैं, मतलब कैसे लोगों को
2: जी
1: कनेक्ट करेंगे, कैसे
2: जी
1: लेके
2: बिल्कुल
1: चलेंगे?
2: जनाब, हमारी सोसाइटी का एम सिर्फ इवेंट्स ऑर्गेनाइज करना नहीं, बल्कि पाकिस्तानी कम्युनिटी को एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना है, जहां फैमिलीज एक दूसरे के करीब आएँ और एक फैमिली की तरह कनेक्टेड रहें। हम चाहते हैं कि ओवरसीज़ रहकर भी हम अपनी उर्दू लैंग्वेजेस, ट्रेडिशन और کلچر ویلیوز کو زندہ رکھیں. ہماری کوشش ہوتی ہے کہ ہماری ینگ جنریشن اپنی روٹس اور

0: आइडेंटिटी को समझे और अपने फ़ख्र करे। इसलिए हम ईद गैदरिंग, इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेशन और फैमिली इवेंट ऑर्गेनाइज करते हैं ताकि कम्युनिटी में यूनिटी और पॉजिटिव को प्रमोट किया जा सके। और जहाँ तक बात की जाए ग्रोथ की, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत कम वक्त में कम्युनिटी का रिस्पांस बहुत पॉजिटिव रहा है। रोज़ नए फैमिलीज और मेंबर्स हमारे साथ कनेक्टेड हो रहे हैं और इवेंट्स में पार्टिसिपेशन भी इंक्रीज़ हो रही है। सबसे अच्छी बात यह है कि यूथ और बच्चे भी एक्टिविटीज़ में एक्टिवली पार्टिसिपेट कर रहे हैं। आज कम्युनिटी सिर्फ एक ग्रुप नहीं बल्कि एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट सिस्टम और एक फैमिली की तरह ग्रो कर रही है
1: जी।
0: जहाँ लोग एक दूसरे के साथ खुशी और मुश्किल दोनों वक्त में खड़े नज़र आते हैं। और जहाँ तक बात की जाए, आपने जैसे पूछा कि हमारे इस सोसाइटी को लेके फ्यूचर प्लान्स क्या हैं, तो उसके बारे भी मैं आपको बता दूं। हमारा विज़न है कि फ्यूचर प्लान्स में और भी बड़े लेवल पर हम अपनी कम्युनिटी कल्चर और फैमिली इवेंट्स को ऑर्गेनाइज करें। हम यूथ लीडरशिप प्रोग्राम्स, स्पोर्ट एक्टिविटीज़ और एजुकेशनल सेशन स्टार्ट करना चाहते हैं ताकि हमारी यंग जनरेशन पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहे और पॉजिटिव एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व रहकर अपनी आइडेंटिटी पर प्राउड फील करें। हम वुमेन और चिल्ड्रन के लिए भी और एक्टिविटीज इंट्रोड्यूस करना चाहते हैं और डिफरेंट कम्युनिटीज़ के साथ मिलकर मल्टी कल्चरल इवेंट्स में पार्टिसिपेट करना चाहते हैं ताकि पाकिस्तानी कल्चर को न्यूजीलैंड में एक पॉजिटिव और रिस्पेक्टफुल वे में रिप्रेजेंट किया जा सके।
1: जी थैंक यू वेरी मच ज़ीशान, आपके ख्यालात का तो
2: थैंक यू सो मच। आपका बिल्कुल जो विज़न है वो बहुत अच्छा है और हम तो जानते हैं क्योंकि हम ख़ुद इस कम्युनिटी का हिस्सा हैं और इन फ्यूचर बिल्कुल हम इंशाल्लाह इस प्लान्स पे अमल होते हुए देखेंगे।
0: जी इंशाल्लाह ज़रूर।
1: तो हम ये चाहते हैं कि अभी जो है वो हम एक ब्रेक पे जाएं और उसके साथ साथ आपको एक सॉन्ग भी सुनने को मिलेगा, पाकिस्तानी सॉन्ग, तो ज़रा मुलाहिज़ा फरमाइए।
3: इसी यकीन से मैं आज तक अपने महाज पर अकेला लड़ता रहा, इसलिए कि मैंने इस मट्टी को अपना मान बनाया, जिस मट्टी ने मुझे शान बनाया। शुक्रिया पाकिस्तान, शुक्रिया पाकिस्तान।